श्री दीप निरंजन सब दुख बल, प्रभु दीप निरंजन सब दुख। इसी मंत्र से होवे मन मंजन, इसी मंत्र से मन मंजन, श्री दीप निरंजन सब दुख, प्रभु दीप निरंजन सब दुख।

की अलग पुरी जी महादेव लालानंद जी महाराज की ब्रह्मानंद जी महाराज ओम शांति ओम शांति ओम।

0: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो, हरि ओम, गुड मॉर्निंग।
1: हो रहा है क्या अर्थ?
0: आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू फर्स्ट स्टैंड अप। वी विल बिगिन विद द नेशनल एंथम बिकॉज इट्स आवर इंडिपेंडेंस डे।
1: Először azt szeretném kérni, hogy álljatok fel, mert a nemzeti himnusszal kezdjük, ugyanis ez a függetlenség napja most.
0: In India we do not stand like this, not like this, but like this and straight.
1: Indiában így állunk.
0: ऊपर ही यहीं ठीक है, लोग देखेंगे, यहीं आ जाओ। सावधान, जय जय जय। You can start.

गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमैका भवानी कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धिर्कुदासा

शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा शत्रुबुद्धि

दीपं सरस्वत्यं ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवे ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेवतेन गन्तव्यम्।

0: चलो जी, हरिओम, गुड एपिटाइट, एंड आई थिंक दे हैव सम अनाउंसमेंट्स.
1: Jó étvágyat, van valami hirdetni való? Nekem is van.
2: So,

भगवान की। देवादि देव देवेश्वर महादेव, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म की जय।

सिद्धिप्तनियम भगवान की जय श्री श्री विश्वगुरुम दशवापरम स्वामी महेश्वरंज गुरुदेव की जय।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय, श्री सत गुरुदेव की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव, माधवानंद जी भगवान, सत्य सनातन धर्म, मात पिता गुरुदेव की, ओम शांति शांति शांति।

0: भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव
1: की जय,
0: स्वामी मानवानंद जी भगवान
1: की जय,
0: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव
1: की जय।